0: सो छे खोजा ने सोए
1: जेवर आप चने आप आप
0: नानक नदरी घर में डाल
1: होता कर्म क्या न जाए
0: मद डाटा थेल न छमाए
1: केते मंगे जो तपार
0: केते गन नहीं विचार
1: केते कप टूटे वे